0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: So sorry.
3: अरे उठा ले रे देवा उठा ले मुझको नहीं इनको अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का
4: हेलो क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है
3: अरे नहीं रे ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है गलत नंबर लग गया तेरे को अरे पीटर
4: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है
3: हलकट तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको वो ऑटो पायलट अरे बाबा उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा
4: हेलो क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है
3: अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा रख फोन रख अरे राजू मेरा मागा वाली टोपी का है रे बाबा
5: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं
3: अरे एक काम कर इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा इंजन बंद कर दे इसका मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं है रे बाबा
5: लेकिन सर ये हॉर्मोन्स खोल ही नहीं रहे अभी भी
3: मार साले को दोनों वाइपर तोड़ दे एक काम कर इसका पूरा तेल निकाल ले ये ले पाइप डाल एक से गैस निकाल एक से तेल निकाल
5: और तीसरे पाइप से
3: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा वो दुश्मनों के लिए है उससे कुछ नहीं आएगा ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा
4: अरे ये गाड़ी पाकिस्तान की है बड़ी शोर मचा रही है
3: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा है बाबा क्या मस्त जोक मारा
5: अरे कौन अरे
4: हेलो क्या आप नोबेल प्राइज चाहते हैं
3: अरे कौन सा वाला नोबेल है रे सीज फायर वाला या धमकी वाला एक काम करने का दोनों भेजने का दोनों एक अगले साल ले लूंगा मस्त भेजने का

0: जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयम मामृतात्. चैंटिंग दिस महामृत्युंजय मंत्र एंड ऑल्सो चैंट्स ऑफ हर हर महादेव, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स आर मेकिंग देयर वे टू टिबेट फॉर दिस होली माउंट कैलाश एंड मानसरोवर यात्रा. India Today gets you this special broadcast from an altitude of 15,100 feet in Darchin. And we will, over the course of the next half hour, get you detailed interaction with devotees and pilgrims about what's good in this journey, what has been better, and what can be made better. So let's embark on this holy journey to Mount Kailash and Lake Mansarovar with the chant of Har Har Mahadev.
1: यहाँ से मैंने देखा तो एकाएक आंखों में पानी आ गया वो, और पता नहीं चला क्यों, क्या यही आपकी अनुभूति थी?
2: पूरी टीम की हमारी अद्भुत दृश्य था वो, ऐसा था कि हम उसको देखते रहे हैं.
3: तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनामित्युर्मुक्ति मामृतम्.
4: महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ.
0: How was the experience?
5: No words to express. It's been awesome.
6: I'm so grateful to God ki he has given me a chance to come here and see the divinity of revering.
7: से पहले ही दो दिन पहले से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बट वही है कि अब उनका बुलावा है तो व्हाई नॉट, वही करवाएंगे पूरी यात्रा मेरी.

0: And we're now getting some breaking news from Madhya Pradesh, which is all set to become the fifth state to move towards a uniform civil code after the state cabinet unanimously approved the draft UCC bill. So the legislation will be introduced in the assembly during the session beginning tomorrow. Announcing the decision, Chief Minister Mohan Yadav said that the Uniform Civil Code is rooted in the principles of equality and reflects Indian values. The proposed law seeks to bring a common civil framework governing matters such as marriage, divorce, inheritance and adoption, irrespective of religion. Among its key features are a ban on polygamy, mandatory registration of marriages, equal inheritance rights for women and provisions against child marriage. If passed by the Assembly, Madhya Pradesh would join Uttarakhand, Gujarat and Assam in enacting a state-level uniform civil code, while Goa continues to follow its long-standing civil code since the colonial era. The bill is expected to trigger a major political and legal debate in the state legislature once it's brought in the Assembly tomorrow.
1: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है।
0: And my colleague Ravish Pal is now joining us with more details on this. Ravish, Madhya Pradesh is one step closer to the UCC implementation and it has been passed unanimously by the state cabinet and is all set to be introduced in the assembly tomorrow. What all can be expected?
2: देखिए कल 11 बजे के करीब विधानसभा का सत्र शुरू होगा जिसमें बताया जा रहा है कि इस बिल को पेश किया जाएगा और इस पे चर्चा होगी। कांग्रेस पहले से इस बिल का विरोध कर रही है और इसलिए सरकार ने जब सुझावों की पूरी श्रृंखला शुरू की थी और सभी दलों से कहा था कि वो अपने सुझाव दें इस यूसीसी के मसौदे को तैयार करने को, ड्राफ्ट को तैयार करने को लेकर के, तो उसमें कांग्रेस ने उसका बॉयकॉट किया था। अभी अगर हम बात करें तो इसमें साफ हो गया है कि जो ट्राइबल्स हैं मध्य प्रदेश के, उनको फिलहाल इससे दूर रखा गया है। जो सबसे बड़ी बात है इस यूसीसी बिल की, इसमें हम आपको बता दें कि जो मेजर ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश की, भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहरिया और भारिया, ये पूरी तरीके से इस यूसीसी बिल से बाहर रहेंगे। उनको इस यूसीसी बिल में इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी जो कानून लागू होता है बाकी सभी समाजों पे, वो इन पे लागू नहीं होगा जो मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स हैं। और ये बता दें कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पे ट्राइबल्स ही हार और जीत तय करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखा गया है और इसलिए माना जा रहा है कि जानबूझ करके ट्राइबल्स को इससे दूर रखा गया है इस संहिता से। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही शादी लीगलाइज रहेगी, इसके अलावा किसी भी शब मैरिज को लीगल नहीं माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर कोई अनमैरिड कपल है, उनसे कोई संतान प्राप्ति होती है, तो जो अभी तक कहा जाता था कि वो अवैध संतान है, तो अवैध शब्द को हटाया जाएगा, ये भी यूसीसी के इस बिल में लाया गया है। सबसे बड़ी बात लिव इन रिलेशनशिप को लेके भी है, ये साफ कर दिया गया है कि यदि कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो एक महीने के अंदर अंदर उसे जो संबंधित डीएम होंगे वहां जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
0: जी रविश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो द यूसीसी बिल इज ऑल सेट टू बी टेबल्ड इन द मध्य प्रदेश असेंबली टुमारो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज द यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली मीन, व्हाट इज द वन नेशन वन लॉ। सो देयर विल बी कंप्लीट बैन ऑन पॉलीगैमी एज माय कॉलीग Ravish was pointing out, all marriages restricted to a single spouse, and there's also uniform marriage age for all. So same legal marriage age will apply across communities, be it any religion or community. No underage marriage will be allowed, so marriages below the legal age will not be permitted, will not be considered legal. Common personal laws for all, so no particular religion or community can have their own law. In fact, shifting focus, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju is speaking after the all-party meeting. Let's listen in.

एसआईटी का रिपोर्ट अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, तो उसमें जब पूरी बात जब सामने आएंगी तब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार और केंद्र की मोदी की सरकार लोगों के पसीने का पैसा, मेहनत का पैसा जो श्रद्धा से भगवान श्री राम के ऊपर उनके चढ़ावा में दिए थे, वो पैसे पे डाका कैसे डाला गया, कैसा पैसा लूटा गया, ये बातें दोनों तरफ से, दोनों राज्य सरकार से और केंद्र सरकार की तरफ से छुपाई जाएंगी।

0: Viewers, we are beginning the bulletin with our focus on this story. It's a shocking and shameful incident that's come to light from Talkatora police station area in Lucknow, where an attempt was made to rape a four-year-old nursery student. Girish Mishra, the school van driver responsible for transporting the child to and from the school, has been accused of committing this heinous act. After the child's health suddenly deteriorated, her family admitted her to a hospital where medical examinations confirmed that she had been molested and subjected to an attempt of rape. Upon learning of the incident, the police immediately registered a case, an FIR, based on the complaint filed by the family. Acting swiftly, the police arrested the accused van driver, that is Girish Mishra, and have initiated further legal proceedings. Now, the incident took place at a private school in the Rajajipuram area, which falls under the jurisdiction of the Talkatora police station itself. But this is a heinous act that's come to light. A child having been subjected to an attempted rape, which was only found out once she was admitted to the hospital after ailing health, complaints of ailing health. And the reports at the hospital is what confirmed that there was an attempt of rape and that the child had been molested. It's a shocking and disgusting case that we are in fact learning of. It's a four-year-old nursery student is what we are learning about. Listening to the response that's come in at this given point with more details on the incident.
1: Talkatora Thana Chhetr mein नर्सरी में पढ़ने वाली एक चार वर्षीय बच्ची जिसके पिता उसको स्कूल डेली छोड़ते थे, पर वो स्कूल से एक वैन से लौटती थी। 17 तारीख को वैन चालक द्वारा रास्ते में उसके साथ छेड़खानी और दुराचार की कोशिश की गई। यह जानकारी उसने घर वालों को आकर के मैं दिया। घर वाले के तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत किया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया और आरोपी गिरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
0: This is a shameful case, viewers, that we are speaking about. Ashish Srivastav is joining us on the broadcast with more details on the same. Ashish, a very good afternoon. सबसे पहले इस हादसे के बारे में फिलहाल पुलिस को और क्या जानकारी मिली है? अक्यूज्ड के बारे में, अक्यूज्ड अभी फिलहाल पकड़ा भी गया है जो वैन ड्राइवर थे, पूरे इंसिडेंट के बारे में डिटेल्स अभी तक क्या बाहर आई है उसके बारे में बताइए।
2: देखिए, काफी भयावह इंसिडेंट है क्योंकि एक स्कूल में जो है बच्ची जब पढ़ती है वहां पर वो रोज वैन से जाती थी और उसी का जो आरोपी था गणेश मिश्रा करके वो लगातार जो है रोजाना ही ले जाता था, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो घर ना ले जाकर उसको बीच रास्ते में रोक कर छेड़खानी करता है, उसको रेप का अटेम्प्ट करता है और इस दौरान वो बच्ची काफी चीखती चिल्लाती है और जिसके बाद वो जब इसकी पूरी सूचना जब घर को मिलती है, यानी किसी तरीके से जब वह पहुंचती है तब ये पूरे मामले का खुलासा होता है। दर्द से वहां पर चीखती है घर में और जब मेडिकल पे ले जाया जाता है तब वहां पर इस तरीके की घटना के बारे में जानकारी मिलती है कि एक तरीके से मॉलेस्टेशन किया गया, एक तरीके से उसको हरेस किया गया है और सेक्सुअली परेशान किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पूरे परिजनों ने स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी ठहराई है, साथ ही साथ जो वैन चालक है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई और FIR दर्ज करने के बाद हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जो था इसमें उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की भी कार्रवाई जारी है। इस दौरान जो पेरेंट्स हैं उन्होंने स्कूल प्रशासन पर भी इसकी रिस्पांसिबिलिटी की जिम्मेदारी लगाई कि जिन वैन चालकों का कोई भी वो नहीं होता, यानी कि उनका वेरीफाई कैसे करते हैं, किस तरीके से रखते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, उस पर भी एलिगेशन लगे हैं कि स्कूल प्रशासन ने गैर जिम्मेदार तरीके से ऐसे वैन ड्राइवर को लगाया है जिसकी वजह से भी ये दिक्कतें सामने आई हैं और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा जो कार्रवाई है वो स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी होनी चाहिए और इसको लेकर भी उन्होंने तहरीर दी। हालांकि बच्ची काफी परेशान है इस समय और वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अभी पूरी तरीके से ट्रॉमा में है, इस स्थिति से निकलने के लिए अभी समय रहेगा, लेकिन जो स्थिति हुई उससे काफी ज्यादा
0: जी हमें जस्ट एक सेकंड टाइम दीजिए, हमारे पास थोड़ा और डिटेल्स आया है इस पूरे केस के बारे में। व्यूअर्स, वी आर लर्निंग ऑफ सम मोर डिटेल्स एट दिस गिवन पॉइंट, दैट्स आल्सो कमिंग इन एट दिस पॉइंट फ्रॉम लखनऊ इटसेल्फ। लेट्स क्विकली टेक अ लुक एज टू व्हाट वी आर लर्निंग। Now, this is a separate

0: On that note, viewers, we are taking you to the hearing that was underway for Sonam Wangchuk and him being hospitalized. What we are learning, the Delhi High Court says no relief for Sonam's family is what we see. No interim orders are required at present stage is what the High Court has come out to say as it comments on the plea that had been issued by Sonam Wangchuk's wife. The High Court issues a notice to the government, police, hospital on Gitanjali Angmo's plea and says let the status report or reply rather be filed.
1: दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि उनके हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी. तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया. लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं. उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी. अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी. वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए. आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं. वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में. अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है. उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में. और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे, उससे दुगना जोश होगा. क्योंकि ये जिसके हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है. मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज ऑफ जुडिशियरी, मिसयूज ऑफ यू नो एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज ऑफ मीडिया, हर जगह हमको यही दिख रहा है. तो ये इससे और भी हाईलाइट हो गया कि ये कैसे उनके हेल्थ के लिए नहीं था. और दूसरी बात ये है कि अगर वो जब आए सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता, तो हम एक इंडिपेंडेंट लैब से भी चेक करवाना चाहते हैं. तो अगर इतने ही वो उनके हेल्थ के लिए उनकी

0: You heard the story of Sonam Wangchuk in the national capital, who was on indefinite hunger strike for days. On 21st day, he was picked up by Delhi police, shifted to the hospital. But what you are not hearing, and India Today brings you that report of Amit Bhatnagar, who is on indefinite hunger strike in this tributary of Ken River, because this particular area will also be part of the Ken Betwa River linking project. And right there is Amit Bhatnagar, who is on indefinite hunger strike, has not eaten anything since 6th of July, and every day he resumes his Chita Andolan, sitting on that pyre. He's sending a message to the administration here in Panna, here in Chhatarpur, in Madhya Pradesh, and to the central government, because this project is being seen, overseen by the Jal Shakti Department of the central government as well. So the indefinite hunger strike is also happening here in Madhya Pradesh, in Chhatarpur, and India Today brings you that exclusive report.
1: में मेरा बोर था जी, बंधा वाले ने पूर दिया और जमीन को असिंचित लिख दिया। वहाँ पे एक कम से कम 2.5 बीघा में खेत घर बनाया कि घर बना है, तो 2.5 बीघा में घर बना है तो उतना मुआवजा क्यों नहीं दिया?
2: 30 बीघा जमीन है, 15 एकड़ जमीन का 5 एकड़ का मुआवजा दिया है, 10 एकड़ का मुआवजा नहीं दिया है।
0: Women are holding चिता सत्याग्रह, men are hanging like they have been hanged to death, a representational protest to protest against what they say is the unfair compensation being given to them for the land that is being acquired for construction of the Ken Betwa linking project.
3: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन, सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज़्यादा केसेस लगा दिए, मेरे ऊपर भी एक दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं।
4: इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में जो जन्मे हैं, इस मिट्टी में हमने खेले खाए हैं, इस मिट्टी से हमने बहुत सुख पाए हैं। इस मिट्टी को छीना जा रहा, हमारी जमीन छीनी जा रही है, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे हम।
5: हमारी यह मांग है कि हमारी जमीन, मकान, जंगल, नदी हम चाहिए।
0: हियर नेक्स्ट टू पन्ना टाइगर रिजर्व, अमित भटनागर इज ऑन फास्ट अंटिल डेथ सिंस जुलाई 6, डिमांडिंग फेयर कॉम्पेंसेशन फॉर द विलेजर्स इन छतरपुर एंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अमित भारद्वाज रिपोर्टिंग फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम मध्य प्रदेश।
6: And on that very note, viewers, we're wrapping up the bulletin this hour right here. But do stay tuned as we keep bringing you all the latest updates through the evening.
7: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
8: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
9: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling, because there's country music fans everywhere.
8: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
10: This is a major legislation. It's going to change the political map of this country for the next 50 years. When you are doing that, you need to have the widest possible consultation. You can't have individual meetings in secret with one group or the other. You have transparent meetings, have a dialogue, and try and find a consensus.

Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: फ्रेंच परफ्यूम्स बाय चोगा, अ फ्रेग्रेंस दैट लास्ट्स लॉन्गर देन 10 आवर्स, सो आई कैन बी माय सेल्फ अ लिटिल मोर। फ्रेंच परफ्यूम्स बाय चोगा, फॉर हिम एंड हर।

0: Beginning the bulletin with focus on breaking news. Gangster Goldie Bra demands 5 crore rupee extortion from Delhi restaurant owner. Foreign-based gangster Goldie Bra has allegedly demanded a 5 crore rupee in extortion from a Delhi restaurant owner, is what we're learning. The demand was made to the owner of Breathe and Marcus Bar and Restaurant, located in Punjabi Bagh in Delhi. The victim, Rajkumar Walia, has filed a complaint at the Punjabi Bagh police station. An audio recording of the alleged extortion demand has now surfaced. The extortion demand was allegedly made in the name of Goldie Bra himself, and Goldie Bra is a wanted fugitive from India that we know about. The FBI recently added Bra to its wanted list and has announced a reward for information leading to him. On that note, Arvind Ocha joining us on the broadcast with more details on the same. Arvind, अभी और क्या जानकारी मिल रही है? ये जो एक्सटॉर्शन अमाउंट 5 करोड़ रुपए मांगा गया है इस रेस्टोरेंट के ओनर से, इसके बारे में और क्या जानकारी है आपके पास?
1: देखिए, पंजाबी बाग में एक बड़ा क्लब है जिसका नाम है बीट फाइन लाउंज एंड बार। उसके जो ओनर हैं राजकुमार वालिया, उनको 18 जुलाई और 19 जुलाई को वॉइस कॉल के जरिए धमकी दी गई, और जो कॉलर है उसने अपना नाम गोल्डी ब्रार बताया और जान से मारने की धमकी दी और बताया कि 5 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन के लिए वो डिमांड करिए। उसके बाद जो कंप्लेंट है उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बारे में रिटर्न कंप्लेंट दी है। दिल्ली पुलिस के जो DCP है उन्होंने इंडिया टुडे को ये बताया है कि वो इस जो कंप्लेंट है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, जो ऑडियो क्लिप है उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं कि ये गोल्डी ब्रार का है या फिर किसी और का। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है। वहीं जो जो क्लब के ऑनर हैं वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनको लगातार वॉइस कॉल के जरिए थ्रेट मिल रहा है और 5 करोड़ रुपए उनसे मांगे जा रहे हैं। जी
0: जी अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विल व्यूअर्स, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी विल कीप अ वेरी क्लोज ट्रैक ऑफ दिस वेरी स्टोरी। एट दिस पॉइंट दीज आर द डिटेल्स वी हैव। More breaking news coming in. July 20th, viewers, will be a busy day in Delhi. And because of that very reason, the security has been stepped up across the New Delhi district ahead of the monsoon session of the parliament and the Cockroach Janta Party's proposed Chalo Sansad march on Monday, with the Delhi police imposing prohibitory orders under Section 163 of the BNSS. The heightened vigil impact comes as the CJP had, remember, announced their march in protest against the alleged NEET irregularities and their demand of the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Deputy Commissioner of Police, DCP Sachin Sharma, has shared a public advisory stating that the Delhi Police categorically clarifies that no permission has been sought or granted for any such protest march or procession. Let's first listen in to what the DCP had to say.
2: It is categorically clarified that no such application for permission has been received or given to Delhi Police, or no such permission has been granted. Prohibitory orders under Section 163 Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita are in force in whole of the New Delhi district area. So according to that, assembly of 5 or more persons, protest marches or demonstrations are not allowed except for the designated protest site Jantar Mantar, that too only after permission.
0: So viewers, as we were mentioning, July 20th will be quite a busy day is what is expected so far. Busy day when we call it so. Well, at this point, of course, there is the Parliament's monsoon session that will be convening. But at the same time, whether the CJP protesters will get down and move out from Jantar Mantar and march

0: captioned, and I quote, "When Sasural finally feels complete again," unquote. The wholesome family moment resonated with viewers across social media. A Pune resident shared an emotional encounter with a speech and hearing impaired delivery executive, describing the interaction as a powerful reminder of resilience and determination. The heartfelt videos has inspired thousands online to appreciate the dedication of delivery workers.
1: That guy has hearing and speech impairments. मतलब वो सुन नहीं सकते और बात नहीं कर सकते. Still he is working as a Zomato delivery guy and delivering food to all of us. He's working so hard.
2: Isn't it weird how motherhood can turn certain dreams into a nightmare? For years, Mumbai was my ultimate dream city. But the day I actually moved here, I just wanted to go straight back to Bangalore.
0: A Dutch woman who fulfilled her dreams of moving to Mumbai discovered she deeply missed the life she had built in Bangalore.
2: I felt safe. But Mumbai doesn't do slow. The very same fast pace that the young explorer in me used to crave suddenly felt like constant panic mode. I was stepping into motherhood.
0: Her emotional reflection on leaving the garden city struck a chord online, highlighting how home is often defined by memories rather than places.
2: I went from a breezy home in Bangalore to a tiny apartment that felt suffocating. And instead of exploring my dream city, I was dealing with a placenta bleeding and severe anemia.
0: A rickshaw puller has won hearts after a video showed him sharing everyday ride with his loyal street dog. Sitting comfortably at the front of the rickshaw, the four-legged companion calmly joined him throughout the day, turning an ordinary commute into an internet favorite wholesome moment. A simple homemade meal prepared in a modest home in Tripura has reminded social media that often love is expressed through everyday gestures rather than expensive gifts. The wholesome video resonated with viewers celebrating family, warmth and the joy of sharing food together.
3: Bendy?
4: Alu.
3: Kya chicken khane ka man karta hai? Bole kya kya? Kyun? Kyun chahe re bitana? Paisa hai mere paas. 50 rupaye aaye mere paas. 50 rupaye.
5: I resigned from my 18 years corporate job few days back. My family is entirely dependent on me.
0: After spending 18 years in the corporate world, a man has gone viral for explaining why he resigned despite having a family depending on him.
5: Always trained new employees in the company, handled all the escalations, everything I did. But when it came to promotion, it went to someone else.
0: He said leaving his stable career made him feel truly alive again, sparking conversations about purpose, burnout and work-life balance.
5: I ask myself, if not now, then when? So here is what I know after spending 18 years in corporate companies. You already have a skill and income for which the company is already paying you for. If you're sitting in a job that is slowly killing your dreams, just comment freedom and I will send something that I have made for all new people who want to start their side hustle. And you will see your entire life change in the next 6 months. Thank you.
6: रात के बज रहे हैं 2 और हम बैंगलोर की सड़कों पे, एक्चुअली सड़कों नहीं, विधानसभा के सामने, ये रहा बैंगलोर का विधानसभा और इसके सामने हम खड़े हैं. और यार सही बोला गया है, यही अगर नोएडा होता ना तो हम चल नहीं पाते रोड पे, मतलब वहाँ.
0: A woman from Noida has sparked debate after sharing how comfortable she felt walking around Bengaluru's Vidhan Sada at 2 a.m.
7: लेकिन नोएडा में ना आप ट्रैफिक से बच सकते हो, लेकिन बैंगलोर में आप ट्रैफिक से नहीं बच सकते.
6: यार ट्रैफिक.
0: Comparing the experience with her hometown, she reignited conversations online about women's safety and late night mobility across Indian cities.
6: I love Bangalore. मुझे आना है.
7: Guys, comments में लिखना कि इनको बैंगलोर आने के लिए और ये आएगी फिर. इनका comments 1000 से भर दो, एकदम आ जाएगी. Challenge accepted.
6: मैं तो चाहती हूँ कि नोएडा छोड़ू और बैंगलोर आऊँ. क्योंकि यार इतना सेफ्टी सिक्योरिटी किसको नहीं चाहिए,
7: मतलब हम ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि शाम के 6 बज रहे हैं।
6: दो लड़कियां और बैंगलोर में विधानसभा के आगे गेड़ी मार रही
7: है, कोई ईव टीजिंग नहीं, कोई छेड़ नहीं रहा है, कोई गंदे लुक्स नहीं दे रहा है, कुछ नहीं, इट्स एज सेफ, दिखा दो ये वाला भी दिखा दो,
6: हाँ सी
7: सेफ है,
6: पूरा सेफ है, पूरा रोड खाली है, पूरा रोड खाली है। और ये रहा विधानसभा की खूबसूरती, कितना सुंदर बनाया नहीं
8: भाई। मैंने ना एक चीज नोटिस करी न्यूयॉर्क के बारे में, तू सच बताना कि मैं सही हूँ या नहीं, क्योंकि तुझे 10 साल हो गए यहाँ पे और मैं तो टूरिस्ट हूँ, कि अगर आपकी एनर्जी इस सिटी से मैच नहीं करी ना तो आप गए, आप अकेले पड़ जाओगे या जो भी है, क्या ये सच है? और अगर है तो कैन यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट इट?
9: बात बिल्कुल सच है ये।
0: An Indian man who has spent a decade living in New York shared the realities behind chasing success in one of the world's most competitive cities.
10: Actually growing. सब कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी में चल रहे हैं, तो तुम्हें खुद लगेगा कि यू आर एक्चुअली लाइक लेटिंग योरसेल्फ डाउन बाय नॉट कम्पीटिंग विद दैम। प्लस अगेन लाइक द एक्सपेंसेस, द फाइनेंसेस आर अगेन लाइक आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। एवरीबॉडी लाइक जिसको हसल करने अपनी लाइफ में वो अपनी उसकी एज पे आता है, प्रॉबेबली फॉर मी इट वॉज लाइक 23, 24 to 35, 36।
8: तो अगर आप सोच रहे हो आपका सपना है न्यूयॉर्क आने का, तो भाई ये सोच कर आना कि भाई मैं आऊंगा 10 साल एकदम फास्ट लाइफ, तगड़े पैसे कमाऊंगा करोड़ों में, एंड देन आसपास कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा।
0: स्पीकिंग अबाउट रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ, हिज रिफ्लेक्शन ऑफर्ड अ ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव ऑन द ट्रू कॉस्ट ऑफ अचीविंग ड्रीम्स अब्रॉड।
10: तुम्हारा फेडरल टैक्स लगता है, स्टेट टैक्स नहीं है, तो काफी पैसे बच जाते हैं। एनी ऑफ द सेंट्रल अमेरिकन सिटीज आर लाइक वेरी चीप एज कम्पेयर टू दीज बिग सिटीज लाइक न्यूयॉर्क और एसएफ कैलिफोर्निया बोस्टन।
8: तो भाई मैं ऐसे इतने लोगों को जानता हूँ जिनकी करोड़ों में पैकेज है, वो भी नहीं यहाँ पे घर लेते भाई, मैनहट्टन में तो इट्स इम्पॉसिबल, तो फिर वो आसपास जाते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो मे बी दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। बाकी आपके क्या कमेंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो बता देना मेरे को।
0: Christopher Nolan, Tom Holland and Matt Damon delighted fans after arriving in Mumbai for the Odyssey premiere. Before the screening, the Hollywood trio enjoyed a relaxed tea break at the iconic Olympia Coffee House in Colaba, with videos of their casual outing quickly going viral. Urvashi Rautela has once again grabbed headlines after a video of her chatting with Marvel star Tom Hiddleston at the Wimbledon 2026 final went viral. The interaction sparked excitement online, adding another Hollywood name to the actor's growing list of celebrity encounters. After days of mystery surrounding its viral teaser campaign, BTS has finally unveiled the music video for Normal, marking the much-awaited payoff to the Arirang Era Promotions. The release instantly sent fans into frenzy, dominating conversations across social media. Moni Roy has become the center for online discussion after a video showed her asking paparazzi to stop filming while she sat inside her car in Mumbai. Appearing visibly uncomfortable, the actor's request has reignited conversations around celebrity privacy and media boundaries.
11: जिंदगी में हर मुसाफिर किसी वजह से मिलता है, कोई थोड़ी देर के लिए, कोई जिंदगी भर के लिए।
12: तुम्हारे चेहरे पे ना वो वाली एनर्जी है।
13: वो एनर्जी मतलब?
12: जैसे कोई वर्जिन लड़का पहली बार किसी लड़की को घर ला रहा
13: हो। लॉयर है यहाँ
12: जी?
13: ऑब्जेक्शन मिलोर्ड।
12: मिलोर्ड नहीं होता,
13: सस्टेन्ड।
0: The trailer of Musafir Cafe, starring Vikrant Massey, Vedika Pinto and Mahima Makhwana has been unveiled.
13: मोहब्बत का अजीब ही तरीका होता है, वो फिर से लौट आती है किसी नए रूप में, किसी नई मुस्कुराहट के साथ।
14: चंदर की लाइफ में अगर सुधा नहीं होती तो आज ये मुसाफिर कैफे नहीं होता।
15: ये सभी जानते हैं कि यही वो लड़की है जो इस कैफे को इतना स्पेशल बनाती है।
16: हम पर किसी के होने का असर उतना ही होता है जितना उनके ना होने का।
0: Exploring themes of love, heartbreak and self-discovery, the romantic drama has generated buzz online, with audiences praising its emotional storytelling and heartfelt performances.
13: Kabhi-kabhi sabse bada safar wo hota hai jahan hum kisi nayi jagah nahi balki us mohabbat ke paas jaate hain jise hum kho chuke hain.

0: rebel faction of the TMC, whose MPs have announced their merger with the little-known Nationalist Citizens Party of India. Opposition also protested against Lok Sabha Speaker Om Birla's decision to allow separate seating for the 20 rebel TMC MPs. Kiran Rijiju, on his part, made an appeal for constructive debate during the monsoon session of the parliament. Parliamentary Affairs Minister shifted the onus of smooth functioning of the House on the opposition. Meanwhile, the recognition of the rebel UBT MPs and rebel TMC MPs have stirred the numbers game. The developments have strengthened the NDA's tally, taking its number to now 318 in the lower house of the parliament.
1: Sansad ka monsoon satra kal se shuru hogi. Aaj sarkar ne all party ka floor leaders ka baithak bulaya hai. Hum pure political parties ko anurodh karte hain ki ye jo monsoon satra hai isko achhi tarah se chalane mein sab योगदान करें, सहयोग करें. पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे. पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा. हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वह अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें. कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं. और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था. हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है. लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, ये सब चाहते हैं. देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं. पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है. इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने. हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है. इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को, विशेष करके जो ये मानसून सत्र है, कई इम्पॉर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं, इसमें सब सहयोग करें. अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें. और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे.
2: और मुद्दे को कौन उठाएगा वहाँ, वो हम सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो. और ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया.
3: जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, अभी ये जो छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर है, वो लोग उस पर बात होगी, सोनम वांगचू पर बात होगी. फिर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिला के जिस तरह से माइलेज कम किया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर बात होगी. ये तीन राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे, उसके साथ साथ स्टेट के अपने अपने मुद्दे होंगे. नीट के पेपर लीक को लेकर जो छात्रों का मुद्दा है और छात्र हताश हैं, निराश हैं, उनसे बात नहीं हो रही है, इसको लेकर पूरा देश एकमत है. मुझे ऐसा लगता है जो सत्ता पक्ष में भी है ना, वो भी अंदर ही अंदर उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं होंगे.
4: टुडे द एंटायर ऑपोजिशन ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी, द डीएमके, द जेएमएम, द आम आदमी पार्टी, द नेशनल कॉन्फ्रेंस, द लेफ्ट पार्टीज, द शिवसेना यूबीटी हैव ऑल वॉक्ड आउट ऑफ द ऑल इन ऑल पार्टी मीटिंग इन प्रोटेस्ट because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the party

0: संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वह अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले मैं भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने। हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को, विशेष करके जो ये मानसून सत्र है, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं, इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें। और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे।
1: और मुद्दे को कौन उठाएगा वहाँ, वो हम सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो। और ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
2: जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, अभी ये जो छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर है, वो लोग उस पर बात होगी, सोनम वांगचू पर बात होगी, फिर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिला के जिस तरह से माइलेज कम किया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर बात होगी। ये तीन राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे, उसके साथ साथ स्टेट के अपने अपने मुद्दे होंगे। नीट के पेपर लीक को लेकर जो छात्रों का मुद्दा है और छात्र हताश हैं, निराश हैं, उनसे बात नहीं हो रही है, इसको लेकर पूरा देश एकमत है। मुझे ऐसा लगता है जो सत्ता पक्ष में भी है ना, वो भी अंदर ही अंदर उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं होंगे।
3: टुडे द एंटायर ऑपोजिशन ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी, द डीएमके, द जेएमएम, द आम आदमी पार्टी, द नेशनल कॉन्फ्रेंस, द लेफ्ट पार्टीज, द शिवसेना यूपीटी हैव ऑल वॉक्ड आउट ऑफ द ऑल पार्टी मीटिंग इन प्रोटेस्ट because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our...
4: Now, it's a political twist that we're looking at. Why so? Because the DMK now signals support for the centre's delimitation bill. Quite a googly that we see being thrown by MK Stalin himself right after he burnt a copy of this bill a few months back in April, calling it a black law. With 22 MPs, DMK shift could now boost the NDA numbers and isolate the ally Congress in the parliament. Here's a special report on the DMK's changing political calculus in the House. Take a look. DMK has come a long way since MK Stalin burnt a copy of the delimitation bill and dubbed it as a black law. The former Tamil Nadu chief minister had burnt a copy of the contentious bill while campaigning for the assembly polls in the month of April. But 3 months is an eternity in politics. Stalin-led DMK was ousted from power in Tamil Nadu and the Dravidian party is no longer part of the India bloc. So perhaps a political pivot had become necessary.

0: एनडीए की ताकत बढ़ रही है क्योंकि मोदी जी पर लोग विश्वास जता रहे हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और एक समर्पित भाव से वो देश की सेवा करते हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक भी छुट्टी 12 साल में नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री देखा है आपने? और आज देश आगे बढ़ रहा है, आज देश आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहे हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह डगमगा चुकी है, ऐसे परिस्थिति में भारत को आगे बढ़ाना ये गौरव नहीं है? और इसलिए एनडीए मजबूत हो रहा है और हमारा भी फर्ज है। हम एनडीए के घटक दल है, हमारी पुरानी पुराना गठबंधन है, हम भी चाहते हैं एनडीए मजबूत हो।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: position. Meanwhile, the recognition of the rebel UBT MPs and rebel TMC MPs have stirred the numbers game. The developments have strengthened the NDA's tally, taking its number to now 318 in the lower house of the parliament.
1: संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी. आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है. हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें. पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टी सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे. पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा. हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वह अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें. कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं. और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था. हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है. लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं. पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है. इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूँ कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने. हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है. इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को, विशेष करके जो ये मानसून सत्र हैं, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं, इसमें सब सहयोग करें. अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें. और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे.
2: और मुद्दे को कौन उठाएगा वहाँ, वो हम सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो. और ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया.
3: जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, अभी ये जो छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर है, वो लोग उस पर बात होगी, सोनम वांगचू पर बात होगी, फिर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिला के जिस तरह से माइलेज कम किया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर बात होगी. ये तीन राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे, उसके साथ साथ स्टेट के अपने अपने मुद्दे होंगे. नीट के पेपर लीक को लेकर जो छात्रों का मुद्दा है और छात्र हताश हैं, निराश हैं, उनसे बात नहीं हो रही है, इसको लेकर पूरा देश एकमत है. मुझे ऐसा लगता है जो सत्ता पक्ष में भी है ना, वो भी अंदर ही अंदर उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं होंगे.
4: टुडे द एंटायर ऑपोजिशन ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी, द डीएमके, द जेएमएम, द आम आदमी पार्टी, द नेशनल कॉन्फ्रेंस, द लेफ्ट पार्टीज, द शिवसेना यूबीटी हैव ऑल वॉक्ड आउट ऑफ द ऑल इन ऑल पार्टी मीटिंग इन प्रोटेस्ट because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our.
0: Now it's a political twist that we're looking at. Why so? Because the DMK now signals support for the center's delimitation bill. Quite a Google.

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: Speaking of Sonam Wangchuk, no relief for Sonam Wangchuk's family is what we see, with the Delhi High Court having backed the government's decision to shift climate activist Sonam Wangchuk to Safdarjung Hospital, ruling that the move is not arbitrary given his deteriorating health after an extended hunger strike. The court also rejected the claim that Wangchuk was being detained or that his bodily autonomy was being violated. Wangchuk's family will challenge this order, and the case will now be mentioned before Chief Justice of the Delhi High Court on Monday. Sonam's wife, Gitanjali Angmo, has moved the Delhi High Court seeking his transfer from Safdarjung Hospital to a private hospital. The petition by Sonam's wife alleged that he was on the 21st day of his peaceful hunger strike at Jantar Mantar and was illegally and unlawfully detained under the pretext of medical intervention. The High Court has issued a notice to the government police and hospital authorities and directed them to file a status report within the next 3 days. And because of the same reason, the matter will now be heard again on Thursday. In a social media post, meanwhile, Sonam's wife has also alleged discrepancies in the hospital's assessment of Wangchuk's potassium levels. But the court has taken note of submissions that his blood sugar and potassium levels were low, with potassium levels in fact being described to be dangerously low in the medical reports.
2: वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
3: He continues to remain fully conscious, alert. His vital parameters like blood pressure, pulse rate, saturation remain normal. But there is some minor deviation in his lab parameters because of which we are giving the required treatment at our hospital. But he continues to remain on fast, therefore he is very weak and also can lead to deviation and complications. Therefore, we feel, which is the combined team of All India Institute and Safdarjung Hospital, we feel he needs to be continuously monitored and be prepared for any intervention that may be required to maintain his good health.
1: The gloves are off and the daggers are drawn. Well, the opposition is gearing up for a fiery monsoon session and it is not leaving any stone unturned to corner the government over the Ram Mandir Chanda Chori issue. They've launched a strong attack on the government over the alleged embezzlement of donations at the Ayodhya Ram temple. And Congress leaders Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge have even written to the Prime Minister right ahead of the session, demanding a thorough and independent probe. Now, this letter has already set the tone for the monsoon session. So take a look at this news report, which brings to you all that's happened so far.
4: Ahead of the monsoon session, the opposition is gearing up to corner the government over the Ram Mandir donation scam. In a joint letter, Leader of Opposition of the Lok Sabha, Rahul Gandhi, and the Congress President and the Leader of the Opposition of the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, have demanded a high-level investigation into the alleged theft. The Congress leaders claim that Ram Bhakt, who donated their hard-earned income with faith, are feeling betrayed by the theft. In the letter, the Congress stalwarts pointed out that while the Prime Minister announced the formation of the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in the Parliament, all its members were appointed solely by the government. Opposition has highlighted that all the members of the trust were from the RSS, VHP or its affiliates. Rahul and Kharge also questioned the Prime Minister's silence on the very issue.
5: Ye Bharatiya Janata Party, इसकी सरकार ने भगवान राम को धोखा दिया है, उनका चंदा ही नहीं चुराया, उनकी विश्वास और आस्था पे डाका डाला है और इसीलिए सबसे ज्यादा पहले मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, यही हमने कहा है कि चंदा चोरी का मुद्दा।
4: The special investigation team probing the Chanda Chori is expected to submit an interim report to the Supreme Court on Monday. Police intensively questioned the key accused Ram Shankar Yadav alias Tinnu and his nephew Manish Yadav. During the grilling, both the accused admitted to stealing donations. Tinnu even admitted to misusing Champat Rai's ID to issue VIP passes for Ram Mandir, while Manish used the theft money to organize bhandaras, buy expensive gifts and land. Police are now examining all those involved in the temple's daily operations. Police lens is on the 50 people involved in counting currency donated by the devotees at the temple. The temple trust will be holding a crucial executive committee meeting in Ayodhya on July 22, 2026. The meeting is set to appoint the temple's first full-time CEO, reconstitute 5 internal committees and review the final probe report regarding the alleged embezzlement of temple donations. The opposition is determined to corner the government on this sensitive issue. The big question remains who will respond to the opposition's attacks on the issue. Bureau Report, India Today.
1: The opposition staged a dramatic walkout from the all-party meeting after the government invited a rebel faction of the TMC, whose MPs have announced their merger with the little-known Nationalist Citizens Party of India. Opposition also protested against Lok Sabha Speaker Om Birla's decision to allow separate seating for the 20 rebel TMC MPs. Kiran Rijiju, on his part, made an appeal for constructive debate during the monsoon session of the parliament. Parliamentary Affairs Minister shifted the onus of smooth functioning of the House on the opposition. Meanwhile, the recognition of the rebel UBT MPs and rebel TMC MPs have stirred the numbers game. The developments have strengthened the NDA's tally, taking its number to now 318 in the lower house of the parliament.
6: संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी। आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है, इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा, उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, वह अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने। हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को, विशेष करके जो ये मानसून सत्र है, कई इम्पॉर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं, इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।

0: एनडीए की ताकत बढ़ रही है क्योंकि मोदी जी पर लोग विश्वास जता रहे हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और एक समर्पित भाव से वो देश की सेवा करते हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक भी छुट्टी 12 साल में नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री देखा है आपने? और आज देश आगे बढ़ रहा है, आज देश आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहे हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह डगमगा चुकी है, ऐसे परिस्थिति में भारत को आगे बढ़ाना ये गौरव नहीं है? और इसलिए एनडीए मजबूत हो रहा है और हमारा भी फर्ज है। हम एनडीए के घटक दल है, हमारी पुरानी पुराना गठबंधन है, हम भी चाहते हैं एनडीए मजबूत हो।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.